मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

0: झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झा
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।